क्या नजर न मुझ पर डाली जाएगी, क्या नजर न मुझ पर डाली जाएगी, क्या मेरी फरियाद खाली जाएगी। अपने मिलने का पता कोई निशान, तो बता दे मुझे ऐ रब्बे जहां। अपने मिलने का पता कोई निशान, तो बता दे मुझको ऐ रब्बे जहां। ओ माय बिलवर्ड अल्लाह, विल यू नॉट कास्ट अ गेज ऑफ रहमत एंड मर्सी अपॉन अस सिनर्स? For whom is your mercy? Will our calling go in vain? My beloved Allah, how do we meet you? Where do we meet you? Give us your address, my Allah. Give us some sign. क्या मुझ पर नजर न डाली जाएगी, क्या मेरी फरियाद खाली जाएगी।